0: को हितका लागि विजय एफएम 101.6 द्वारा जारी सन्देश विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मिठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612204437
1: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

0: गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612204437।
1: अहिले बिहानको 8 बज्यो।

श्री परमात्मने नमः। श्री मौल कालिका दिव्य नमः। विद्युताम सम प्रभा मृगवती स्कंदस्थितामीषणाम कन्याभिः करवाल खेत विलोच दस्ताभिराज सेविताम हस्ते शकर गदा से खेत विष्कांसा प्रमगणम तर्जनीम विभ्राणामनलातिकाम शशि।